दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे, है जो सीने में कह

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: Feel good, lay back and enjoy the biggest hits through the night on Leica Radio.

0: है
1: लाइका रेडियो
2: नन ईटन गेट रेडी पेपेज पेरी पेरी इज फायरिंग अप समथिंग बिग आवर स्टोर इज नाउ ओपन फ्रॉम फ्लेम ग्रिल्ड चिकन टू माउथ वाटरिंग रैप्स इट्स बोल्ड इट्स स्पाइसी इट्स प्योर पेपेज विजिट अस एट 126 एबी स्ट्रीट सीवी 11 5BZ पेपेज पेरी पेरी पेपेलिशियस
0: Bollywood's biggest 90s songs non-stop

0: in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: V-Head Leica Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ At all protected.
3: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कर कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खा। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

ना विजाणीए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, दूसरा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भाव।

होए ता लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला एती सुरत न पाया, नदियां ते

भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी।

आद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार।

0: salads, all packed with pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
1: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
2: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
3: भाई निकाल माइक।
4: भाई माई के प्यार कितना सुंदर।
5: The brand new reality TV show Bhojpuri Pawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
6: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Vadhan, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
7: Leica Radio.
8: बहुत पढ़ाई किया है ना तूने? तो एक सवाल का जवाब दे।
9: पूछ ही लो सर।
8: साल के कितने महीने में 28 दिन होते हैं?
9: फरवरी सर।
10: सर, साल के हर महीने में 28 दिन होते हैं।
5: Yeah. India ke top 1% starts this September on Star Plus.
8: India ke top 1%, sirf degree nahi, dimag bhi jeetega.
6: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
11: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड। मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू।

0: ये है लाइका रेडियो। लेस्टर, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया। Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare, demontforthall.co.uk
1: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

आज सुबह 6 बजे से मैं यहाँ पे एक एक्साइटिंग न्यूज अनाउंस कर रही हूँ. अगर आपने मिस किया तो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दैट लाइक अ रेडियो नेटवर्क हैज मेड हिस्ट्री वंस अगेन विद इट्स हाईएस्ट एवर लिस्टिंग फिगर्स फॉर बोथ लाइक अ रेडियो एंड लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंडन. नॉट ओनली डिड लाइक अ रेडियो लंडन एंड लाइक अ गोल्ड डिलीवर इट्स हाईएस्ट एवर रीच बट लाइक अ गोल्ड रिमेन्ड एज अ नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन बाय अ ह्यूज डिस्टेंस. और आपको ये पता है कि लाइक अ ग्रुप नेटवर्क जो है 7 रेडियो स्टेशंस एक ही पॉडकास्ट डिलीवर इट्स बिगेस्ट एवर वंस अगेन पोजीशन ऑन द नंबर वन एशियन कमर्शियल नेटवर्क इन लंदन. बट डिड यू नो दैट बिहाइंड एवरी वॉइस ऑन द रेडियो देयर इज अ जर्नी दैट मोस्ट पीपल नेवर सी. People often see the smile. अब हमारी photographs जो हम social media पे post करते हैं आप देख सकते हैं हमारी smile, हमारी microphone और radio में हमारी जो आवाज है आप सुन सकते हैं कि हम कितने खुश हैं. You can hear the great music and see the glamour as well. But what you don't actually see is the 4 o'clock alarm. Subah subah. Getting ready before the rest of the world wakes up. The 1 hour long drive to the studio. Presenting for 3 to 4 hours with energy and positivity. Never mind what goes on at home right now. Then the journey back home to continue the rest of the day. And to be honest, that's true of almost every profession. Every job has its unseen challenges, sacrifices and dedication. And we rarely see what happens behind the scenes. But here's the beautiful part. We love it. This isn't just a job. It's our passion. It's our purpose. And it's our gift. Every early morning is worth it because we know we're sharing a small part of your day. Whether you're driving to work, making breakfast, dropping the children to school, or simply enjoying your morning coffee, thank you for allowing us to be part of your daily routine. आपकी जो messages है ना

0: Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Leica Radio. लेस्टर तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए. जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन कॉन्सर्ट फीचरिंग बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर, प्ले बैक सिंगर अमन त्रिका और फीमेल सिंगर मयूरी पटालिया. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 p.m., show starts 7 p.m.

0: के और सुनो हाँ, एक परी थी।
1: क्या?
0: एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी। गगन देश था उसका।
1: क्या?
0: गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

के तू अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ

0: बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 6 तारीख और एक और मनोरंजन प्रोग्राम। माय नेम इज रवि शर्मा। सबसे पहले आप सबकी ओर से शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद कहें काजल को। शील बी बैक टुमारो मॉर्निंग। अब से लेकर दोपहर बाद 1 बजे तक गीतों का खजाना खुलेगा और आज भाई थोड़ी सी डिफरेंट चाल चलेगा ये प्रोग्राम। कुछ एक दर्द भरे गीतों को स्थान मिलेगा। ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हो चुके हैं और बहन भाइयों आपकी इजाजत हो तो हम अपनी डायरी खोलें और शायरी बोलें। आज दर्द की पहचान, हाहें, आंसुओं, इंतजार, शिकायतें, वो सब कुछ सिमट कर शायरी में समा जाएंगे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ये दर्द जगह बना लेता है। मुझको खबर नहीं थी कि ये सयाद करेगा, पर काट के मेरे मुझे आजाद करेगा। पंख काट के मेरे, पर काट के मेरे मुझे आजाद करेगा। तेरी खुशी के वास्ते कुछ भी न क्यों कर ले, तू जब भी करेगा मुझे नाशाद करेगा। न जाने तेरे दर्द के रवैये के बावजूद, तेरे ठंडे और सर्द रवैये के बावजूद, उम्मीद नहीं थी कि मुझे तू बर्बाद करेगा। लेकिन एक बात दावे से कह सकते हैं कि इस दर्जा मोहब्बत किसी दीवाने ने तुमसे न पहले की होगी और ना मेरे बात करेगा।
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. This is Leica.
0: Is darja mohabbat kisi deewane ne tujhko na pehle ki hogi aur na mere baad karega। हम

0: बात तो सही है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो प्यार और गहरा हुआ है, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाजों में, और इससे पहले जिस गीत से प्रोग्राम की शुरुआत हुई, स्वर्गीय मुकेश का स्वर था, दूल्हा दुल्हन था फिल्म का नाम, हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। मैं हर किसी को वैसे ये दावा करने का साहस होता है हर किसी में कि भाई वो जितना प्यार करते हैं ऐसा कोई नहीं कर सकता, जबकि वो खुद ही उससे ज्यादा किसी और को कर चुके होते हैं। चलिए थोड़ा गंभीर हो जाइए, आज हंसने वाला दिन, हंसने हंसाने वाला दिन नहीं, वो बुधवार को होता, लेकिन आज भी बीच बीच में भाई कोई ऐसी चटपटी बात आ गई तो ठहाका गूंजेगा। लेकिन आज दर्द भरे गीतों को सुनवाएं तो साहब कैसे सुनवाएं, क्योंकि लोग कह रहे हैं आज तो शोर मचाने का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। क्यों? क्योंकि भाई फिगर्स बहुत अच्छी आई है लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी स्टेशन की, श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारे स्टेशंस बढ़ रहे हैं, प्रेजेंटर्स बढ़ रहे हैं, स्टाफ बढ़ रहा है, हाँ पैसे भी बढ़ रहे होंगे जरूर, इनकम भी बढ़ रही होगी भाई पक्का। बधाई हो भाई, श्रोताओं की बदौलत ही ये सब होता है, तो आपको बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। राइट नाउ लेट्स फाइंड आउट हाउ The pound is performing against Indian rupee.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK giving 127.85 rupees for one pound. That is Indian rupees. 127 rupees aur 85 paise. Bharat bhijwana chahe to you can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Durandar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Lester Miller is back.
5: And the stage is about to explode. Confirmed artist
4: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
6: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइका गोल टू ऑन लाइका रेडियो मोबाइल ऐप laikaradio.com एंड एलेक्सा प्ले लाइका गोल टू। Listen back to your favorite shows by logging on to laikaradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
3: अब लौट आइए संगीत की तरफ। और बहनों भाइयों, जो गीत मैं सुनवाने जा रहा हूँ आपको, भाई इसके साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं। यादें क्या साहब, मधुर यादें जुड़ी हैं। ये गीत जब भी बजाता हूँ याद आती है कमलेश फरीदाबाद वाली। नहीं, कोई चक्कर नहीं था साहब, बस ये गीत मैं और वो परफॉर्म किया करते थे स्टेज पर। ना चोरे

पूरे 3 घंटे के शो में भाई ये गीत यानी इस गीत पर कमलेश का डांस जो है वो शो की अट्रैक्शन होता था। और इसमें भाई वो देवानंद वाला जो भाग है वो मैं परफॉर्म करता था ज्वेल थीफ फिल्म में। ये गीत लंबा गीत है लेकिन इसमें भाई म्यूजिक ज्यादा है और उस म्यूजिक पर वो डांस परफॉर्म करती थी, क्विंटल क्विंटल के झटके लगाती थी भाई। सीट पर बैठे बैठे लोग उछलते थे, तालियां बटोरते थे हम। लता मंगेशकर और भूपेंद्र की थोड़ी सी आवाज है जिस पर मैं परफॉर्म करता था, लेकिन स्टेज पर हिलना डुलना और भाई वो अभिनय करना वो तो लोगों को जो है भाता ही था, लेकिन कमलेश का डांस सबको मस्त बनाता था।

0: पैरा मधुर यादें जुड़ी इस गीत के साथ। भाई तीन तीन शो रोज के हुआ करते थे और डिफरेंट डिफरेंट शहरों में हमने परफॉर्म किया। फंड्स जुटाते थे हम कभी किसी चैरिटी के लिए, कभी किसी ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन टिकटें बिक जाती थी और कभी कभी हाउसफुल होता था। अजाब एक के बाद एक शो, यानी बीच में एक शो देख कर लोग निकल रहे हैं दूसरे शो के लिए अंदर आने वाले, उस बीच में जितना तो अंतराल मिलता था उसी में हम जलपान करते थे, उसी में हम दोबारा से अपने आप को मेकअप करके रेडी होते थे अगले शो के लिए। पर वो यादें याद रहेंगी साहब। पैसा कमाने के लिए शर्मा जी ने भाई बहुत पापड़ बेले हैं यूं समझिए। गीत खत्म हुआ, समय हो गया है समाचारों का और खबरों में आज देखते हैं क्या है।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like a radio.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। यूक्रेन ने रूस के यारोस्लाव शहर में मौजूद एक बड़ी तेल रिफाइनरी समेत दो रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया है। उस इलाके के गवर्नर मिखाइल ने दावा किया है कि यारोस्लाव पर दुश्मन ड्रोन का अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक हुआ है। उन्होंने बताया कि रूसी फौज ने 92 ड्रोन को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। हालांकि ड्रोन के मलबे गिरने से 3 घरों में आग लग गई। यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यारोस्लाव स्थित स्लाव नेफ्ट यानोस रिफाइनरी और बशकोरतास्तान स्थित बशनेफ्ट नोवोइल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। भारत से आने वाली खबरों में अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की आज झांसी में एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। अतीक अहमद का नाम तो भाई आप भूले नहीं होंगे, वो यूपी का बाहुबली जो राजनीति में भी भाई और क्राइम में भी काफी नाम कमा चुका था, और एक समय हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी कुछ लड़कों ने गोली मार के हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक यह हादसा कानपुर झांसी हाईवे पर झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में खिल्ली गांव के पास आज सुबह करीब 11 बजे हुआ है। अतीक अहमद का एक बेटा तो पहले ही मारा गया था, ये छोटा बेटा अबान अहमद आज झांसी में एक सड़क हादसे में मारा गया है। हादसे में एक और शख्स की भी मौत हुई है और 3 दूसरे लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। खाड़ी इलाके में टेंशन के बीच सऊदी अरब जा रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 6 से 8 अगस्त तक, यानी आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी सऊदी अरब जाएगा जिसमें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और रक्षा बलों के प्रमुख समेत कुछ और मंत्री भी शामिल होंगे। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में दोनों देशों के बीच दो तरफा रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ इलाके और इंटरनेशनल मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। युगांडा के स्टार फुटबॉलर डेविड ओवोरी की मृत्यु हो गई है। लूटपाट के दौरान हुए वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, ये हादसा हुआ है युगांडा की राजधानी कंपाला में। देश के चर्चित फुटबॉलर डेविड ओवोरी की मौत की खबर आ रही है। लोकल पुलिस के अनुसार मंगलवार को सस्पेक्ट लुटेरों ने ओवोरी पर हमला किया था और इस दौरान उन्होंने लूट का विरोध किया तो हमले की वजह से वो बेहोश हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। झारखंड में कंपटीशन एग्जामिनेशंस में कथित गड़बड़ियों के विरोध में स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो का अनशन चल रहा है। आज उनके अनशन का 5वां दिन है। उन्होंने बताया कि उनका दिमाग अभी भी सही से काम कर रहा है और वो अपना अनशन जारी रखेंगे। मेटा ने प्रधानमंत्री मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने पर माफी मांगी है। भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज इसे भारत के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत बताया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ये भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत है। ये 140 करोड़ लोगों के नेता, प्रधानमंत्री की ताकत है। इससे साफ है कि जिसे भी भारत में कारोबार करना है उसे भारत के कानूनों का पालन करना होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज दावा किया है कि भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट को प्रतिबंधित कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई है उस पर। उन्होंने इस मामले को लेकर मेटा से सवाल किया और पाबंदी लगाए जाने की वजह बताने की मांग की है। T20 में रिकॉर्ड बनाने के बाद क्या कह रहे हैं जोस बटलर? यहां जोस बटलर ने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पर जोस बटलर ने वेस्ट इंडीज के केरन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ा, तो साथ ही एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कुछ भी कर सकते हैं। देखता हूं कितने दिन रहेगा मेरा ये रिकॉर्ड, क्योंकि इसको तोड़ने वाले कई बैट्समैन आगे आ रहे हैं। बटलर ने कहा कि वास्तव में यह बहुत खास एहसास है कि आपके नाम सबसे ज्यादा T20 रन है, लेकिन एक ना एक दिन तो कोई इस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ेगा और उसका नाम शायद होगा वैभव सूर्यवंशी। वैसे आपको बता दें भाई, वो जो अमृतसर वाला लड़का है ना, अभिषेक शर्मा, उसने भी अभी एक मैच में 91 गेंदों पर 233 रन ठोक डाले और वो कह रहा है कि मेरे बैट का भी ध्यान रखना। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इसराइल से मतभेदों के सवाल पर एक बयान दिया है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि इसराइल अमेरिका का एक अच्छा पार्टनर है और सहयोगी देश है, लेकिन दोस्तों के बीच छुटपुट मतभेद रह सकते हैं, हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ब्लेयर हाउस में हुई बैठक के दौरान उनका विरोध नहीं किया था। दरअसल इससे पहले कुछ एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नेतन्याहू ने वेंस की मुखालफत की थी। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के फाउंडर इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान ने दावा किया है कि पिछले 60 महीनों से उन्हें अपने अब्बू से, अपने पिता से मिलने की इजाजत नहीं मिली है। दोनों ने अमेरिकी चैनल CNN से बातचीत में इमरान खान की सेहत को लेकर के चिंता जताई है। कासिम और सुलेमान ने कहा कि हमारी आखिरी बार मार्च में फोन पर बात हुई थी और इसके बाद से परिवार के किसी भी मेंबर को उनसे मिलने या बात करने की इजाजत नहीं दी गई है। राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम से पहले एक विवाद खड़ा हो गया है। प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला प्रबंधन ने 8 अगस्त को कांग्रेस के प्रस्तावित स्टूडेंट्स की गूंज कार्यक्रम के लिए KP कॉलेज के खेल मैदान का आवंटन रद्द कर दिया है, यानी वो जो बुकिंग थी वो रद्द कर दी है। कायस्थ पाठशाला के कार्यवाहक यानी एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष जितेंद्र नाथ सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है और इसमें बताया है कि कॉलेज के प्राचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 अगस्त 2025 के आदेश का जिक्र करते हुए चिंता जताई है कि इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई और स्पोर्ट्स एक्टिविटी

0: में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते एमएलए यानी विधायक उमा शंकर सिंह का निधन हो गया है। वे 55 साल के थे और लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से बीमार थे, पीड़ित थे। और आखिर में यह खबर कि ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के लिए एक नए रूट पर ओमान के साथ सहमति बना ली है, राजी हो गए हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
2: Disco!
0: लौट आइए संगीत की ओर, एंजॉय कीजिए किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। ले चलते हैं आपको गुजरे जमाने में, डिस्को 82, 1982 के इस गाने में।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर ये लाइका गोल्ड के कार्यक्रम है जिनमें आप सुन रहे हैं मनोरंजन रवि शर्मा के साथ। भाई सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आपके लाइका रेडियो नेटवर्क के स्टेशन जो हैं खूब लोकप्रियता बटोर रहे हैं और श्रोताओं की संख्या में तादाद में बढ़ोतरी हो रही है लगातार। ज्यादा लोग सुन रहे हैं, ज्यादा देर तक सुन रहे हैं। और भाई ये आपका लाइका रेडियो नेटवर्क अब दूर दूर तक पहुंच रहा है, दुनिया भर में सुना जा रहा है। तो इस उपलब्धि पर आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आइए अब सुनते हैं थॉट फॉर द डे, आज का विचार यानी चिंतन। आज के चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से मीना और सुनीता का भेजा आलेख। मीना एंड सुनीता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। मीना जी लिखती हैं कि अक्सर हम लोग इंतजार करते हैं कि मौका मिलेगा तो हम भी कोई अच्छा ही करेंगे, हम भी कोई उपकार का काम करेंगे, हम भी किसी का भला करेंगे। अवसर का इंतजार करते हैं, सोचते हैं जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें कोई बड़ा काम करना होगा। लेकिन सच ये है कि बड़ी खुशियां अक्सर छोटी छोटी अच्छाइयों से जन्म लेती हैं। बड़े मौके की तलाश मत कीजिए, छोटे छोटे काम, छोटी छोटी अच्छाइयां, थोड़े थोड़े उपकार। देखिए जैसे किसी परेशान व्यक्ति की बात को ध्यान से सुन लेना, किसी बुजुर्ग का हाल पूछ लेना, बिना किसी मतलब के किसी की मदद कर देना, ये छोटे छोटे काम किसी के पूरे दिन को बदल सकते हैं और आपके भी दिन को महका सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे शब्दों में बड़ी ताकत होती है। बोलने में थोड़ा सा मिठास, थोड़ा प्यार भर लें तो सुनने वाले का दिन बन जाता है। और एक कठोर शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी का दिल जोड़ सकता है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प इस चिंतन में कि आप किसी के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे। एक भिखारी सड़क पर भीख मांग रहा था, सर्दी का मौसम, ठिठुर रहा था बदन उसका, फटे कपड़ों में वो अपने आप को ढके रखने की कोशिश कर रहा था। कटोरा आगे फैला करके चेंज मांगता था, आवाज में करुणा थी, बदन में जान नाम मात्र की। तभी एक कवि, एक लेखक, कवि हृदय नवनीत समाना, संतों जैसा हृदय होता है पिघल जाता है। कवि ने जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डाला, देखा तो पैसे नहीं थे, पर्स में भी नहीं थे पैसे। आज अपने आप को कोस रहा था, एक जरूरतमंद हाथ फैला रहा है और मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूं। फिर कवि आगे बढ़ा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर, हाथ में उसके कटोरा था, फिर भी उसने दोनों हाथों को अपने हाथों में लेने की कोशिश की और उसके गर्म हाथ और भिखारी के ठंडे हाथ, भिखारी को थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई। उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, माफ करना भाई, आज पैसे नहीं हैं। यकीन मानो मेरे पास पैसे होते तो मैं आज तुम्हें जरूर दे देता, कभी फिर इधर से गुजरा तो पैसे लेकर के ही आऊंगा, आज माफ कर देना। फिर उसने देखा कि भिखारी की आंखों से तो आंसू आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, आपने जो दिया है वो तो कोई देता ही नहीं है मुझे। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। दिया है ना, भिखारी ने कहा, आपने ये जो गर्माहट दी है मेरे हाथों को, ऐसे मेरे हाथों को कोई छूता भी नहीं है। लोग दूर से गुजरते हैं, पैसा देते हैं तो फेंक कर देते हैं, आपने जो अपनापन दिया है ना, ये तो कभी मिला ही नहीं। समझ में नहीं आता कि मैं
कैसे आपका थैंक्स बोलूं, कैसे आपको धन्यवाद दूं। आपने जो दिया है वो खजाना है, आपने मुझे अपना माना है, आपने मुझे पहचाना है कि मैं भी एक इंसान हूं। अब कवि की भी आंखों में आंसू थे। बहनों भाइयों, यही है वो जो हम किसी को भी दे सकते हैं। अपनापन, किसी के होठों पर मुस्कान, किसी की आंखों में चमक, ये अपनेपन का एहसास डेफिनेटली है आपके पास। बांटिए, दीजिए किसी को। थैंक यू मीना शर्मा एंड सुनीता शर्मा।

0: किसी के काम आना। दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए सूरज बनना जरूरी नहीं है, एक छोटा सा दीपक बनकर भी आप अपने आसपास उजाला फैला सकते हैं। जानते हैं बहनों भाइयों, आज 6 अगस्त है और ये इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना कहें या दुर्घटना की याद दिलाता है। 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर न्यूक्लियर बम गिराया गया था, परमाणु बम, और कुछ ही क्षणों में पूरा शहर तबाही की चपेट में आ गया था। हजारों लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद बरसों तक उसके भयावह परिणाम दिखाई देते रहे। आज उस ट्रेजेडी के आंकड़े नहीं सुनाना चाहता मैं, लेकिन सावधान या करना चाहता हूं। उसमें एक छोटी सी मानवीय घटना भी घटी थी कि उस भारी विनाश के बीच भी लोग जिससे बन सकता था, जितनी बन सकती थी, उनसे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। किसी ने तड़पते हुए जख्मी को, अजनबी को पानी दिया, किसी ने किसी बच्चे को सहारा दिया, किसी ने अपने से ज्यादा जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन बचा कर रखा। आज बहुत सारे देशों के पास है, कई देशों के पास है न्यूक्लियर बम, और कुछ बात में धमकी भी देते रहते हैं कि हमने ये किसी तीज त्योहार के लिए नहीं रखा हुआ बना के, पर वो बोलते हुए सोचते नहीं है। भारत के पास न्यूक्लियर बम है, लेकिन उसका एक वचन भी है, उसकी एक प्रतिज्ञा है कि वो पहले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी सिर्फ आत्मरक्षा में, अदरवाइज कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए वो न्यूक्लियर बम का, यानी उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, पर पहले लड़ाई में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी ने उसका अटैक किया, इस्तेमाल किया, फिर जवाब में करेंगे। अमेरिका के पास है, भाई कई देशों के पास है, लेकिन विनाश की बात क्यों करें? विज्ञान अगर तरक्की कर रहा है तो विकास की बात क्यों ना करें? किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये था आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए गीत आपने स्वर्गीय मुकेश जी की आवाज में सुना। दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म आई थिंक अनाड़ी, और भाई आलेख भिजवाया था हमें ऑस्ट्रेलिया से मीना शर्मा और सुनीता शर्मा ने। याद दिला दो आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK reminding that money you want to send to India to your friends, family members, the rate is good. Today they are giving for £1, 127.85 rupees. You can transfer via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Laika Radio.
4: Laika Radio.
5: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
6: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
5: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Umbala. Heritage you can taste. Visit umbala.co.uk.
8: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
9: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
8: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
9: Also explore 2026 cruises
8: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
10: Leicester Mela is back
11: and the stage is about to explode. Confirmed artist
10: H Zami. Bringing the hits, the energy and those proper live stage vibes.
11: Hosted by the team of Lyco Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
10: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
11: Arts Council England.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 02039 63 5757. Greens by Danube. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, pickles heat. Ye hai Jaimin Foods ka vibe check.
15: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
14: Jaimin Foods desi cravings available at nearest ethnic grocery stores.
16: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज। कॉल करो 02023 773 633। मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रेवल मंत्रा।
2: Lyco Radio launches Birmingham wide on DAB from September 1st.
17: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie, results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
18: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
19: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: और सॉन्ग रफी साहब की आवाज में ये गीत आपने सुना, फिल्म दोस्ती से लिया गया था भाई 1964 में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुनों को चोटी के संगीतकारों में भाई उन्हें उनके नाम को शामिल कराने के लिए जिम्मेदार थी ये फिल्म। तो साहब बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने आपको सुनवा दिए, और आपको याद दिला दूं कि ये कार्यक्रम दोपहर बाद एक बजे तक जारी रहेगा। माय नेम इज रवि शर्मा एंड इफ यू हैव जस्ट जॉइन मी, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।
2: Like our radio.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Leica Extra Podcast Update.
3: और बहनों भाइयों, लाइका रेडियो नेटवर्क की लोकप्रियता में जो बढ़ोतरी, ये श्रोता बढ़े हैं, इसका सम्मान बढ़ा है, मुकाम बढ़ा है भाई, उसमें थोड़ा योगदान इसका भी है जो आजकल हमारा बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, लाइका एक्स्ट्रा। लाइका एक्स्ट्रा में नया एपिसोड जुड़ गया है, एपिसोड 27, ऑनर बेस्ड अब्यूज। भाई ये कुछ ऐसी मान्यताओं को आधार बना करके जो अत्याचार किए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, बच्चों को जीना उनका मुश्किल कर देते हैं, ये इस तरह की बातें हैं जो धारणा पर आधारित हैं। और ये भी डिस्कस किया है हमारे दीप राजा और हमारी खुश ने, खुशबू खुश। और भाई ये बड़ा गंभीर विषय, बर्निंग टॉपिक है, इसे जरूर देखिएगा आप। ऑनर बेस्ड अब्यूज इन अवर देसी कम्युनिटीज जो पाया जाता है, उसको भाई उस पर चर्चा हुई है। तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
4: Yeah.
0: Leica Radio.
5: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika, और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
6: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Be sure to catch the show across the Midlands, the Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July, and at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September, and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

डूबे भी नहीं ठीक से न पार गए हैं, पल जिंदगी के कीमती बेकार गए हैं। बाजी तुम्हारे इश्क की थक कर समेट ली, हम हार गए हैं।

प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में स्वागत है श्रोताओं का। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। वो फिल्म जिसे देवानंद ने ठुकरा दिया था, अमिताभ बच्चन को उसने सुपर हीरो बना दिया।

0: व्हाट अ सॉन्ग। हमारे दोस्त भाई कमल मॉरिशस वाले इस गीत गुनगुनाया करते स्टेज पर जब भी आते, इस गीत से प्रोग्राम शुरू करते थे। और मॉरिशस में भाई बीना जी वो भी गाती हैं और वो भी सुन रही हैं, तो भाई ये गीत उनको भी पहुंचता है। और ख़ास तौर पर ये गीत पहुंचता है हमारी बहन जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है, उनके नाम करते हैं। दो गीत बैक टू बैक संगीत के तहत हमने सुनवाए। पहला गीत था वो फिल्म जंजीर से, और भाई जंजीर फिल्म को देखिए, बड़े बड़े हीरोज ने ठुकरा दिया था, बोले नहीं टू मच वॉयलेंस है टू मच। और ये फिल्म देवानंद ने भी ठुकरा दी, तो अमिताभ बच्चन से पूछा गया। अमिताभ बच्चन भाई नए नए थे, अमिताभ बच्चन से ज्यादा तो प्रतिष्ठित थी जया भादुरी, लेकिन उन दोनों ने इस फिल्म को स्वीकार किया और फिल्म को उस ऊंचाई तक पहुंचाया। प्राण भी थे फिल्म में, बड़ा जबरदस्त रोल था उनका। तो साहब कुल मिलाकर के सुपरहिट फिल्म हुई और अमिताभ बच्चन रातों रात एंग्री यंग मैन बन गए। तो ये गीत पहला गीत था कार्यक्रम के अंतिम दौर का। दूसरा गीत फरीदा गुलाम अली की फरमाइश पर हमने सुनवाया लहरों की तरह यादें, भाई ये किशोर कुमार की आवाज में निशान फिल्म का गीत था। अब गीतों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके का रेट बताएंगे, पाउंड के बदले कितने इंडियन रुपीस वो दे रहे हैं, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। याद दिला दूं दोपहर बाद 1 बजे तक हमारी आपकी ये मुलाकात जारी रहेगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके। Reminding, nice rate if you want to send money to India. For £1 they are giving 127.85 rupees maximum. You can transfer via branch, online or by using the Yono SBI UK mobile app. Send money to your people. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
2: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: Leicester Miller is back.
5: Get ready for a weekend full of colour, culture, music, food, family fun and live performances.
4: Confirmed artists include Lember Husseinpuri, H. Thami, Roach Killer, Chirag Rao and Shin DCS.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester. An event by 101 Circle in association with Leicester City Council and Arts Council England.
6: Leicester's iconic hot potato shop is now serving up fresh flavour at Foss Park. After 45 years on Belgrave Road, we've rolled in with another brand new Airstream trailer, serving piping hot loaded jacket potatoes and fresh cut chips made to order. Open 7 days a week with generous portions and unbeatable taste. Find us outside M&S next to the Barclays Hub. Look for the shiny Airstream and grab your favourite today. Hot potato shop, now at Foss Park. Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, एट होल प्रोटेक्टेड।

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2. Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and laikagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
1: और बहन भाई, यो आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर एंड ए पॉलिटिशियन एज वेल। भारतीय जनता पार्टी से उनका संबंध रहा है। विश्वजीत इज द आर्टिस्ट ऑफ द वीक। हिंदी और बंगाली सिनेमा में भाई बहुत नाम कमाया इन्होंने, विश्वजीत चटर्जी। और उनकी फिल्मों के गीत भी भाई अब तक जो है गुनगुनाए जाते हैं, सुने और सुनाए जाते हैं। आर्टिस्ट ऑफ द वीक विश्वजीत, उनकी फिल्म का ये गीत सुनिए। रफी साहब के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाज शामिल है।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आओ डांस करें, मैं डांस करना तो बनता है क्योंकि आपके लाइका रेडियो नेटवर्क ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, बहुत बड़ी संख्या में श्रोता जुटाए हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, दूर दूर बैठे श्रोताओं का अधिक देर तक सुना जाता है, अधिक श्रोताओं के साथ जुड़ा हुआ है और अधिक प्यार जुटा रहा है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क, ताज़े आंकड़ों से ये साबित हुआ है। अब आज का दिन भाई 6 अगस्त को, वैसे तो मैंने बताया कि 6 अगस्त जो है वो न्यूक्लियर बम्बारमेंट जो जापान पर हुई थी अमेरिका के द्वारा, उसके कारण 1945 में जो हुआ था हादसा, उसके कारण भाई कलंकित है, यूं कहिए प्रसिद्ध नहीं, कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात कहते हैं, जो बैड रेपुटेशन उस दिन की बनी। लेकिन आज के दिन के साथ और भी कई बातें जुड़ी हैं भाई, मुझे याद आ रही हैं भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। किसी जमाने में सुषमा स्वराज हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर थी कुरुक्षेत्र में, और भाई एक बार वो हमारे कैंपस में जब वो राजनीति में एंटर कर चुकी थी, मैं तब भी स्टूडेंट था, मैं तो बहुत जूनियर था, उनसे बहुत पीछे था, तो वो मोरारजी भाई देसाई को, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्हें कुरुक्षेत्र लेके आई, बहुत बड़ा जलसा हुआ। तो भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट वहाँ थे सुनने के लिए, हम मोरारजी भाई देसाई के साथ साथ भाई सुषमा स्वराज जी को भी मंच पर देखना चाहते थे। दुबली पतली खूबसूरत और थोड़े छोटे कद की थी सुषमा जी, लेकिन भाई बोलने में दबंग, जिस तरह से उन्होंने मोरारजी भाई को इंट्रोड्यूस कराया, लगता था एक बहुत बढ़िया वक्ता रही हैं वो यूनिवर्सिटी में, इसीलिए स्टूडेंट लीडर बनी थी, और फिर वो भारत की विदेश मंत्री बनी भाई। अब आज उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें याद करते हैं। और जन्मदिन किसका है आज, आवाज सुनानी पड़ेगी, पहचानने की कोशिश कीजिएगा कौन है ये।
3: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस, विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।
2: चाची जी, इतनी सारी आवाजें कैसे पहचानेंगे हम जन्मदिन वाले बच्चे को। भाई इन्हीं आवाजों में एक आवाज उस कलाकार की है जिसका आज जन्मदिन है। कुछ ये टंग ट्विस्टर होते हैं ना, जिनको बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, आप बोल के दिखाएं, मैंने बड़े जुटा रखे थे, मैं लोगों से कहता था बोल के दिखाओ। हरियाणवी में शेख के बारे में सौंप सुख देख शेख सूंग सौंप सुखी सहकना, कोशिश करो फिर बताऊं, शेख के बारे में सौंप सुख देख शेख सूंग सौंप सुखी सहकना, ट्राई कर लिया। एक और था बड़ा मुश्किल सा, बोल के दिखाऊं, काली चिड़िया कलमच को तेरी जीब लचापच कलमच को, जब तने दिल में गोता मारा तो दबड़ा कर लचापच कलमच को। चाचा ने चाची को चांदी की चम्मच से चांदनी चौक में चटपटी चटनी चटाई, इतना मुश्किल नहीं है। आदित्य नारायण आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू उदित नारायण के होनहार सुपुत्र।

0: आदित्य नारायण भाई बचपन से ही गाने लग गए थे, यानी कमाने लग गए थे। फिर संगीत तो विरासत में मिला। मुझे याद है एक बार आदित्य नारायण, उनकी माताजी और भाई उनके पिताश्री यानी उदित भाई, इन तीनों ने मेरी गाड़ी में सफर किया लंदन से बर्मिंघम तक। रास्ते भर में बहुत बातें हुई, सर्विसेज पर रुके भी थे, पर उन दिनों इतने फेमस नहीं हुए थे आदित्य नारायण, बच्चे थे छोटे, बहुत पहले की बात है। पर इसमें प्रमुख स्वर जो गीत आप सुन रहे हैं वो आदित्य नारायण का है। आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। छह अगस्त 1987 में जन्मे थे आदित्य नारायण। एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर तो हैं ही।
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: अब ये साउथ ऑल ट्रेवल वालों का संदेश भी बता दें आपको भाई, वो याद दिला रहे हैं आपको कि अगर दुबई की यात्रा करनी है तो आप कीजिए भाई, सारी छूट हैं। FCDO ने कह दिया है कि वो जो हमारा मशवरा था ना अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई, अब वो उठा लिया गया है, खत्म हो गया है। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208 574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday

मोहम्मद अजीज आशा भोसले और साथियों की आवाज में आपने ये गीत सुना। भाई एक खबर आपके साथ साझा करें, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भारत से सीधे मीडिया से बात की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर बांग्लादेश सरकार बड़ी नाराज है। वही इस प्रोग्राम के जरिए शेख हसीना और उनके सहयोगी ने बांग्लादेशी राज्य और देश के लोगों का कहते हैं वो बांग्लादेश सरकार का कहना है कि मजाक उड़ाया। आपको बता दें कि इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन शाकिब अल हसन भी दिखाई दिए। उन्होंने भी बात की और ये दावा किया जा रहा है कि देर रात उनके घर पर फिर अटैक किया गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश अवामी लीग ने यह बयान जारी किया है कि मशहूर क्रिकेट आइकन शाकिब अल हसन के घर पर पेट्रोल बम से एक भयावह हमला हुआ है। कारण क्या कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना के साथ हिस्सा लिया था। बांग्लादेश अवामी लीग की ओर से यह बयान जारी किया गया है। बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि वो वापस बांग्लादेश लौटेंगी चाहे कुछ भी हो।

0: रात के अंधेरे में सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज किसे पुकार रही है? माहौल को डरावना बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है, गीत की स्थिति बताई जा रही है।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।

मदन मोहन की अमर रचना, लता जी की आवाज और भाई बड़े सॉन्ग। फिल्म तो साहब वो क्या कहते हैं, वो मर्डर मिस्ट्री जैसी होती है ना। कुछ फिल्में ऐसी बनी थी जैसे 20 साल बाद भी ऐसी थी, ये तो थी। वो कौन थी? एक अनीता, अधूरा हूँ मैं अफसाना।

0: become Star Plus soon.
1: और लीजिए मेरा भाइयों, अब बाली ब्रह्म भट्ट के लिए स्टूडियो खाली करें, आपसे इजाजत लें। लिखा है भाग में तो मुकद्दर से जंग क्या, कर लूंगा सारी उम्र तेरा इंतजार मैं, कलयुग में मेरे दिल की जरा सादगी तो देख, वादे पे तेरे करके चला एतबार मैं। इजाजत दीजिए, हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक हैं? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार सीपीडी सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।

शंकर जयकिशन का संगीत, तुमने कभी हसरत जयपुरी की लिरिक्स, फिल्म दुनिया 1968। गाना है फिल्म आस का पंछी का, इसमें सुबीर सेन गा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ।

0: फिर कहाँ तक चले, हाय हाय फिर कहाँ तक चले।
1: ये फिल्म है आस्का पंछी, 1961 की फिल्म, और शंकर जयकिशन का संगीत है और शैलेंद्र जी ने लिखा। अब जब ये सुबीर सैन जी जब गाते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि हेमंत दा की आवाज़ है, हेमंत कुमार जी की, लेकिन ये इस गाने के अंदर जब इन्होंने शुरुआत की मुझे लगा मुकेश जी, एंड देन सडनली यू रियलाइज इट्स सुबीर सैन। होप यू एंजॉयड इट। नेक्स्ट इज बाजी।
2: Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
1: ये कौन आया? ओ, गीता दत्त। गीता दत्त जी आ गई। फिल्म है बाजी, 1951. Enjoy.
3: ये कौन आया?
1: एस डी बर्मन का संगीत,
3: ये कौन आया?
1: साहिर लुधियानवी की लिरिक्स।

0: You're listening to Songs with Humming. I hope you are enjoying what you are listening to now. Next gana hega hega Punjabi ch Asha Bhosle.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: L-Y-C-A. This is Laika. This is Laika Radio across the Midlands.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर
4: ये है
5: लाइका रेडियो

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Wally Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-633 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यही है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
3: कैरेटिनो बेटर घी, द हेल्थियर लो प्राइस कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर घी ऑल्टरनेटिव. कैरेटिनो बेटर घी अवेलेबल इन टेस्को, Asda, Morrisons and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
4: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
5: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
4: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: New hits on Leica Radio.

0: Mapster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mapster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है.
3: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो.
4: भाई निकाल माइक.
5: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर.
1: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
6: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. ये है लाइक अ

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं. एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है. शुरुआती सैलरी है 39,500 pounds, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स. दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.

0: Laika Radio. Laika Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
1: I hope me and Naina hum log waqt par pahunche.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफ Travel at all protected.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
0: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.